नमो सर्वमान्य समस्त निदान्य नमो देव देवे अपेक्षी अभेवे नमो काल काले नमो सर्व पाले नमो सर्व गौणे नमो सर्व भौणे अनंगी अनाथे नृसंगी परमाथे नमो पान पाने नमो मान माने नमो चंद्र चंद्रे नमो पान पाने नमो गीत गीते नमो तान ताने नमो नृत नृत्य नमो नाद नाद नमो पान पाने नमो बाद बादे अनंगी अनामे समस्त स्वरूपे प्रभंगी परमाथे समस्त बेपूते कलंकं बिना अने कलंकी स्वरूपे नमो राज राजेश्वर परम रूपे नमो जोग जोगेश्वर परम सिद्धे नमो राज राजेश्वर परम वृद्धे नमो शस्त्र पाणे नमो अस्त्र माणे नमो परम ज्ञाता नमो लोक माता अपेक्षीय परमीय भोगीय भुगते नमो जोग जोगेश्वर परम जोगते नमो नित नारायण क्रूर कर्मे नमो प्रेत अप्रेत देवे सुधर्मे नमो राग रोग हरता नमो राग रूपे नमो सासांग नमो भूप भूपे नमो दान दान्य नमो मान माने नमो रोग रोगे नमस्त स्नान नमो मंत्र मंत्र नमो जंत्र जंत्र नमो इष्टे इष्टे नमो तंत्र तंत्र सदा सच्चिदानंद सर्व प्रणाशी अनूपे अरूपे समस्त निवासी सदा सिद्धदा बुद्धदा वृद्ध कर्ता अधोर दर्दंग अगंग ओग हर्ता परम परम परमेश्वरम प्रोष पालं सदा सर्वदा सिद्धदाता दयालं अशेदी अभेदी अनाम अकाम समस्त उपराजी समस्तस्ताम तिराज और चाचरी शम जले हैं थले हैं अपीत हैं अपे हैं प्रभु हैं आजू हैं आदेश हैं अपेश हैं पुजंग प्रयात छंद अगाध्य अबाध्य आनंदी स्वरूप नमो सर्वमान्य समस्त निदान नमस्तवंग नरेनाथ नमस्तवंग परमाथ नमस्तवंग अगंजे नमस्तवंग अपंजे नमस्तवंग अकाले नमस्तवंग अपाले नमो सर्वदेशे नमो सर्वपेशे नमो राजराजे नमो साजसाजे नमो साजसाहे नमो महामाये नमो गीत गीते नमो प्रीत प्रीते नमो रोग रोखे नमो शोक शोके नमो सर्व रोगे नमो सर्वोगे नमो सर्वजीतंग नमो सर्वपीतंग नमो सर्व ज्ञानंग नमो परमतानंग नमो सर्व मंत्रंग नमो सर्व जंत्रंग नमो सर्व दृश्यंग नमो सर्व कृष्णंग नमो सर्वरंगे त्रैपंगी अनंगे नमो जीव जीवंग नमो बीज बीजे अखिर जे अभ्य जे समस्त प्रसिद्धे कृपानंग स्वरूपे कुकर्म प्रणाशी सदा सर्वदा हृदय सिद्धंग निवासी चार पट छंद त्वय प्रसाद अमृत करमे अमृत तरमे अखल जोगे अचल भोगे चल राजे अटल साजे अखल तरम अलख कर्पंग सर्वंग दाता सर्वंग ज्ञाता सर्वंग पाने सर्वंग माने सर्वंग प्राणु सर्वंग त्राणु सर्वंग भोगता सर्वंग जुगता सर्वंग देवंग सर्वंग पेवंग सर्वंग काले सर्वंग पाले रुआल छंद त्वय प्रसाद आद रूप अनाद मूर्त जीवन पुरख अपार सर्व मंत्र मान देव अपे व्याद उदार सर्व पालक सर्व कालक सर्व को पुन काल जत्र तत्र विराज हे दूत रूप रसाल नाम ठाम ना जात जाकर जान रूप रंग ना रे काल पुरख उदार मूर्त जीवन आदा शेख दे सौर न पेश जाकर रूप रेख न राग जत्र तत्र दशा विशा हुए फैल्यो अनुराग नाम काम विहीन पेखता गुण है जाहे सर्व मन सर्वत्र मान सदै मन तथा एक मूर्त अनेक दर्शन की रूप अनेक खेल खेल खेल खेल अंत को फिर एक दे भेव न जा नहीं जे वेद और कते रूप रंग न जात पास हो जाने के जे वतात्मा न जात जाकर जन्म मरण विहीन चक्र बकर फिराए चत्र चक मान ही पुर तीन लोक चौदह के बिखाए जग जापई जे जाप आदि अनाद मूर्त थाप्यो सब है जे थाप परम रूप पुनीत मूर्त पूर्ण पुरख अपार सर्व विश्व रचियो स्वयं गण भंजन हार काल हीन कला संजोत काल पुरख देश धर्म धाम सुपरम रहत भूत अलख भेसंग राग नरंग जा कह जात पात न नाम गर्भ गंजन दुष्ट भंजन मुक्तदायक काम आप रूप अमी कान वस्तुत एक पुरख अवधूत गर्भ गंजन सर्व भंजन आदि रूप असूत अंगहीन अपंग अनात्म एक पुरख अपार सर्वलायक सर्व कायक सर्व को प्रतिपार सर्वगंता सर्वहंता सर्वतेन भेख सर्व शास्त्र न जाने जे रूप रंगर रेख परम वेद पुराण जाके नेत पाक नेत कोट सिमृत प्राण शास्त्र न आवही बाहु चित्त मद पार्षं त्वय प्रसाद

विरक्त अनास प्रकाश निचिंतन सुनिंत है। अलेखया देखया लेखया पेखया टहया गहया संभ हया गंभ हया नील हया अनाद हया नित हया सुनित हया जात हया आजाद है चर प्रछंद त्वय प्रसाद। सर्वहंता सर्वंगंता सर्वंख्याता सर्वंज्ञाता सर्वंहर्ता सर्वंकर्ता सर्वंप्राण सर्वंत्राण सर्वंकर्म सर्वंतर्म सर्वंयुक्ता सर्वंमुक्ता रसावल छंद त्वय प्रसाद। नमो नरक नासिस देवं प्रकाशे अनंगं स्वरूपे अपंगं विभूते परमात्म परमाथे सदा सर्वसाथे अगाध स्वरूपे निर्बाध विभूते अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकामे नृभंगी स्वरूपे सर्वंगी अनुपे न पुत्र न पुत्र न सुत्र न मित्र न तत् न मत न जात न पात न साकं श्री के अमितो अमीक सदैव प्रवाह अजय है अजा है भगवती शांत है प्रसाद के जाहर जूर है कि हाजर हजूर है। हमेशा सुलाम है समस्त कलाम है कि साहिब दिमाग है कि हुसन चिराग है कि काम करीम है कि राज करहीम है कि रोजी देहंद है कि राज करहिंद है करीम उल कमाल है कि हुसन उल जमाल है गरीम उल खिराज है गरीब उल निवास है हरीफ उल फिकन है हरास उल फिकन है कलंक प्रणास समस्त निवास है गंजुल गनीम है रजाय क्रहीम है समस्त उल जबा है कि साहिब किरा है कि नरकम प्रणास है बहिस्त उल निवास है कि सर्प उल गुवन है हमेश उल अरवन है तमाम उल तमीज है समस्त उल अजीज है परम परमीस है समस्त उल अदीस है आदेश उल अलेख है हमेश उल अपेख है जमीन उल जमा है अमी कुल माँ है करीम उल कमाल है कि जूरत जमाल है कि अचल प्रकाश है कि अमितो सुबास है कि अजु स्वरूप है कि अमितो विभूत है कि अमितो प्रसा है कि आत्मा प्रभा है कि अचल अनंग है कि अमितो अपंग है। मद पार छंद त्वय प्रसाद। मुनमन प्रणाम गुनगन मुदाम हर बर अगन हर नर पर पन्य अनगन प्रणाम मुनमन सलाम हर नर अखंड बर नर मंडन पवनास मन प्रकाश गुणगन प्रणाम जल थल मुदा मन छिज अंगस ने अपंग उपमा पार गत नित्वदार जल थल अमन दसव स्वपन जल थल महत दसव बेअंतन पवनास त्रेत तर तुरास अजान बाव एक कैसदा ओंकार आद कथनी अनाद खल खंड ख्याल गुर बर अकाल कर कर प्रणाम जित चन नाम छिज गात अजिज न बातन चन गातन रंज बातन टुट पंडार अन ठट अपार अडीठ धर्मत ढीठ कर्म अणमृण अनंत दाता महंत हर बोल मना शन त्वय प्रसाद। करुणालय है अरकालय है खलखंडन है मैं मंडन है जगतेश्वर है परमेश्वर है अकल कारण है सर्वोबान है त्रत के तन है जग के कर्ण है मनमानी है जग जानी है जग सर्वंपर है सर्वंकर है सर्व पास्य है सर्वनाश्य है करुणा कर है विश्वम्पर है सर्वेश्वर है जगतेश्वर है ब्रह्मंड से खलखंड से पर ते पर है करुणा कर है। अजपा जप है अथपा थप है अकृता कृत है अमृता अमृत है अमृता अमृत है करुणा कृत है अकृता कृत है धरणी कृत है अमतेश्वर है परमेश्वर है अकृता कृत है अमृता अमृत है अजवाकृत है अमृता अमृत है निर्नायक है खलकायक है विश्वम्बर है करुणालय है नृप नायक है सर्पायक है भाव भंजन है अर्गंजन है रिपताप रिपतापन है जप जापन है अकलंकृत है सर्वाकृत है कर्ता कर है हरता हर है परमात्म है सर्वात्म है आत्मवस है जस की जस है पुजंग प्रयात छंद। नमो सूर्य सूर्य नमो चंद्र चंद्र नमो राज राज नमो इंद्र इंद्र नमो अंधकार नमो तेज तेज नमो वृंद वृंदे नमो बीज बीज नमो राज सुताम सुशांत रूपे नमो परम तत्ंग तत्ंग रूपे नमो जोग जोगे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो मंत्र मंत्रे नमो ध्यान ध्यान नमो युद्ध युद्धे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो भोज भोजे नमो पान पाने नमो कलह कर्ता नमो शांत रूपे नमो इंद्र इंद्रे अनादम विभूते कलंकर रूपे।

करियन करीम रहीम में चत्र चक्रवर्ती चत्र चक्र पौते स्वयंभव सुपंग सर्वदा सर्वज्योति दुकालं प्रणासी दयालं स्वरूपे सदा अंग संगे अपंगं विभूते।

बार चौपाई को कहे चौपाई। संबत 1768 कहे जय भाद्रव सुदी अष्टमी रविवार तीर सुतुद्रव ग्रंथ सुधारा सोइया पाए गहे जपते तुमरे तपते को आखतरे नहीं आनेओ राम रहीम पुराण पुराण अनेक कहे मत एक न मान्यो सिमरत शास्त्र वेद सब बहु भेद कहे हम एक न जान्यो श्री असमान कृपा तुमरी कर मैं न कहो सब तोहे बखान्यो दोहरा

अंतर चतुराई थाए न पाई, बिरथा जन्म गवाया, जम मग दुख पावे चोटा खावे।

नानक प्रभ पाया शब्द मिलाया, ज्योति ज्योत मिलाई, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

सतगुर मेरे सतपायन के हृदय सच वसाय हो रक्षित न जान ने मन मुख जन्म गवाया बिच दुनिया काहे आया बिच दुनिया काहे।